0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड जाइडियो, वेलकम यू टू अनदर एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया, विच कम्स टू यू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे, एंड सो वी इनवाइट यू टू स्टे ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गायाना एज वी बिगिन दिस मेलोडियस जॉय राइड, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. Tremaine Clark is on the console, and we start the program with a song taken from the film Madari, Dil Lootne Wale Jadugar.